गवाही दे रहा है, वमा हुम बि मुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। पहले भी अर्ज किया कि रसूलुल्लाह के जमाने में मदीना मुनव्वरा में जब ये आयात नाजिल हुई है सूरह बकरा की, ये लोग मुआशरे के अंदर मौजूद थे जिनको कुरान मजीद ने मुनाफिकीन का नाम दिया। ये लोग मुआशरे में मौजूद थे, कुरान गवाही दे रहा है ये मोमिन नहीं है, लेकिन इनका शुमार मुसलमानों के अंदर ही होता था। इन पर तमाम अहकामात मुसलमानों वाले जारी होते थे इनके जाहिर को मद्देनजर रखते हुए। और वो जाहिर क्या था, इन्होंने अल्लाह की वादानियत का कलमा जुबान से अदा किया और रसूलुल्लाह की रसालत की गवाही इन लोगों ने अपनी जुबान पर जारी की थी, दिल से ईमान नहीं लाए थे, लेकिन इनको मुसलमानों में ही शुमार किया जाता था। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस तबके की जहन्नम की गवाही दी हुई है और इतनी सख्त गवाही दी है कि फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, कि बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के भी दर के असफल में होंगे। दर के असफल यानी बदतरीन जो जहन्नम की जगह है वहां पर इन लोगों को रखा जाएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने गुज़श्ता दर्स में आपको अर्ज किया था कि एक हदीस आपको बयान करनी है, ये किताब उसूल काफ़ी, किताबुल ईमान वल कुफ्र, और इसका एक बाब है, बाबुन फी अन्नल ईमान मबसूसुन ले जवारिहिल बदन कुल्लिहा। इस मौजू पर यह बाब है कि ईमान जिसे हम ईमान कहते हैं वो इंसान के बदन के तमाम जवारेह में तकसीम है। हाथ का ईमान कैसे साबित होगा, जब हाथ वो करेगा जो ईमान कहता है। आंख कैसे मोमिन आंख कहलाएगी, वो बकौल इकबाल के खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान की फिक्र भी इस्लामी हो और निगाह भी इस्लामी हो, यानी उसके अंदर और बाहर से इस्लाम मुसलमान होना उसके आज़ा व जवारे गवाही दे। तो इस बाब की हदीस नंबर 8 है, मैंने एड्रेस आपको बता दिया, उसूल काफ़ी का माशाल्लाह तर्जुमा भी छप कर आ चुका है और अल्लाह ताला तौफीकात खैर में इजाफा करें। हमारे डॉक्टर साहब की यहाँ तशरीफ फरमाएं, इन्होंने बहुत सारी जहमत की है, एप्लीकेशंस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो आप में से बाज़ अफराद इंशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनमें से उसूल काफ़ी की भी एक एप्लीकेशन है जिसमें उर्दू तर्जुमे के साथ उसूल काफ़ी मौजूद है और आप बड़े आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। उसूल काफ़ी को आप खोलें, किताबुल ईमान वल कुफ्र, उसकी जब आप फहरिस्त चेक करेंगे तो ये बाब आपको मिल जाएगा, बाबुन फ़ी अन्नल ईमान मबसूसुन फिल जवार फ़ी जवार अल बदन कुल्लिहा, और उसकी हदीस नंबर 8 ये आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और अहले बैत के फरामीन ही खूबसूरत फरामीन है, और आप देखेंगे कि कुरान मजीद ने जो बातें की हैं बिल्कुल वही बात इस हदीस में इमाम ने समझाई है। तवज्जो फरमाइए, अन मुहम्मद इब्न हफ्स इब्न खारजा, ये एक रावी हैं, قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना, यकूल, इमाम फरमा रहे थे, वसअलहु रजुलुन अन कौलिल मुर्जिअति फिल कुफ्र वल ईमान, और जबकि इमाम से सवाल किया था एक शख्स ने कुफ्र और ईमान के बारे में, मुर्जिआ

कानून है कि जो जाहिर है इंसान का उसी के मुताबिक हुक्म लगाया जाएगा उस पर। व बय्यनतुहु अमलुहु व नियतुहु, और उसकी बय्यना उसकी दलील उसके दावे ईमान की उसका अमल है और उसकी नियत है। अब देखिए फ़इज़त तफ़का, जब ये दोनों मुत्तफिक हो जाएं, एक दूसरे के मुआफिक हो जाएं, यानी जो दावा किया है नियत भी वही हो और अमल भी मुत्तफिक हो उस दावे के साथ, नियत और अमल मुत्तफिक हो, जब ऐसा हो जाए फल अब्दु इंदल्लाहे मुमिनुन, तो बंदा अल्लाह के पास मोमिन करार पाता है। अल्लाह के पास, अल्लाह के रिकॉर्ड में, कब? जब जुबान से। इन्हीं रिवायात में ईमान की डेफिनेशन पूछी गई, ईमान क्या चीज है, तो आयमा ने क्या जवाब दिया, ईमान तीन चीजों पर मुश्तमिल है। अक्दुन फिल कल्ब, दिल के अंदर, अक्द का तर्जमा मैं करता हूं अकीदा, जिससे हमने निकाला है, दिल के अंदर अकीदा हो उसी बात पर, इकरारुन बिल लिसान, जुबान से इकरार करे, और तीसरा अमलुन बिल अरकान, और उसके जो आजाओ जवारे हैं उनसे अमल करे। ये तीन चीजें मिलती हैं तो ईमान बनता है। अब देखिए फल अब्दु फ़इदा तफ़का, जब ये दोनों मुत्तफिक हो जाएं, फल अब्दु इंदल्लाहि मुमिनुन, तो बंदा अल्लाह के पास मोमिन हो जाता है, तब अल्लाह मोमिन कहता है। जो मुर्जिया कह रहे हैं उस तरह अल्लाह के पास मोमिन नहीं बनता। गौर से सुनिए, वल कुफ्र मौजूदुन बिकुल जिहतिम मिन हादिहिल जिहात सलास, और कुफ्र भी इन तीनों जिहात में मौजूद होता है। किन तीनों जिहात में? मिन नियतिन, नियत में भी कुफ्र हो सकता है और ईमान भी हो सकता है। औ कौलिन, कौल में भी, नियत का जो आपकी अंदर नियत है इंसान की, वो ईमान की भी हो सकती है कुफर की भी हो सकती है। कौल में कैसे? जो कहे मैं मोमिन हूं या कहे मैं मोमिन नहीं हूं, मैं काफिर हूं, कौल में भी ये दोनों चीजें होती हैं। औ अमलिन, और तीसरी कौन सी चीज है? अमल। अमल में भी ईमान भी होता है और अमल में कुफर भी होता है। इसकी दलील भी कुरानी है। सबसे पहले क्या फरमाया अल्लाह ने, गालिबन मुझसे हमेशा ये नंबर मिक्सअप हो जाता है, 32 है या 33 है या 31 है, सूरह आले इमरान की आयत, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ए रसूल कहिए अल्लाह और रसूल की इताअत करो, फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अगर ये इताअत वाले मसले से फिर जाए, तेरी इताअत ना करे, अल्लाह और रसूल की इताअत ना करे, तो इनको बता दो कि यकीनन अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अब ये इताअत के मद्दे मुकाबिल कुफर है, इमाम ये फरमा रहे। कुफर और ईमान नियत में भी होता है, कौल में भी होता है और अमल में भी होता है। अब फरमाते हैं वल अहकाम तजरी अलल कौल वल अमल, और अहकाम किस बिना पर जारी किए जाते हैं? कौल और अमल को देखकर। यानी एक इंसान दूसरे इंसान की क्या क्या चीज देख सकता है? उसके कौल को देख सकता है और उसके अमल को देख सकता है, उसकी नियत को नहीं देख सकता। नियत वो अल्लाह को पता है, अलीम बिदात सुदूर, उसको पता है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वलकद खलकनल इंसान, बेशक हमने इंसान को खल्क किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, और हमें इल्म होता है कि कैसे उसका नफ्स उसे वसवसा कर रहा है, उसे पता है क्या नियत है अंदर। वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम शहरग जान से भी बंदे के इंसान के ज्यादा नजदीक है। तो वो तो वही जानता है, लिहाजा उसकी बिना पर आकाम दुनिया में नहीं लगाए जाएंगे। कोई तेरी नियत का मुझे पता, तेरी नियत में फतूर है ना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह के जमाने के

कुरान में क्या है उससे कंसर्न नहीं था, लेकिन वो जो हार नजर आ रही थी उससे बचने के लिए कुरान की आड़ में धोखा दिया गया। बाज जो बेमारिफत लोग थे अगरचे जाहिरी मुतदय्यन थे उस धोखे में आ गए। खुदा युखादिउन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लदीन आमनू, और ईमान वालों को, वमा यखदउन इल्ला अनफुसहुम, जबकि किसी को धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता? वमा यशऊरून, इस बात का शऊर नहीं रखते। अगर इन्हें अल्लाह पर ईमान होता तो कभी यह हरकत ना करते, क्योंकि अल्लाह पर ईमान इन्हें बता देता कि वो तो दिल के हाल जानता है। चूंकि ये ईमान नहीं रखते, लिहाजा ये अपने आप को बड़ा ओवर क्लेवर, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि रसूल और मोमिनीन इनको हम ऊपर ऊपर से बातें करके धोखा दे लेंगे। वमा यशऊरून, इस बात का शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम मरदुन, आयत नंबर 10, फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में मरज है, बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने भी इनको इनके उस मरज को ज्यादा कर दिया। ये फिर कानून की तरफ इशारा है। इंसानी बदन की आप मिसाल लें, जब इंसान का बदन बीमार होता है तो उसका इलाज करवाना होता है। अगर इलाज नहीं करवाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। यह कानून किसने बनाया है? उसी ने बनाया जिसने ये सारी कायनात और इसके सारे कानून बनाए। वाज़े? तो अब जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, वो पौधे को पानी देने वाली, अगर पानी ना दिया जाए वो मुरझाएगा, फिर ना दिया जाए, मुसलसल पानी ना दिया जाए, एक वक्त आएगा डेड हो जाएगा, उसकी वो मुरझाहट बढ़ती रहेगी, कमजोरी उसकी बढ़ती रहेगी, एक मौके पे डेड हो जाएगा। यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके दिलों में मरज है, और अल्लाह ने मरज बढ़ा दिया है क्योंकि कानून अल्लाह ने बनाया हुआ है। एक बंदा, हम आमतौर पे अपने मुआशरों में, अपने मुआशरे में ये अल्फाज यूज करते हैं। हमारे सामने एक बंदा अच्छा भला सेहतमंद, वो नशे पे लग गया, उसने मसलन ऐसा नशा करना शुरू कर दिया जो आहिस्ता आहिस्ता उसको खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, और बिल आखिर वो बंदा दुनिया से चला जाता है अपनी उसी हरकत की वजह से। हम क्या जुमला बोलते हैं? अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह को यही मंजूर था। इस जुमले का मतलब यह नहीं होता अल्लाह को यही मंजूर था वरना वो बेचारा तो बेकसूर था, ऐसा तो नहीं होता। खुदा को यही मंजूर था का क्या मतलब होता है एक्चुअली? दर हकीकत इस जुमले का असल मतलब यह होता है कि जो रास्ता उसने चुना था उसका यही नतीजा अल्लाह को मंजूर था। जो रास्ता उसने चुना था अपने चलने के लिए उसका अजल से यही नतीजा अल्लाह का मंजूर नजर था, अल्लाह ने यही नतीजा रखा था उसका। और अगर वो खुद अपने गलत इंतखाब से इधर ना जाता तो फिर नतीजा भी ये ना निकलता जो अब निकला है। इस बात को समझो। तो ये जो अल्लाह इनको कह रहा है, फी कुलूबिहिम मरदुन, ये जो मुनाफकत है, चक्करबाजी का ये मरज है इनके अंदर। और याद रखिए कुरान में फी कुलूबिहिम से मुराद वो मरकज है, कल्ब की जमा कुलूब होती है, इंसान के वजूद के अंदर वो मरकज, सादा लफ्जों में कह रहा हूं, जहां अकल रहती है, जहां इंफॉर्मेशन जमा होती है बाहर की दुनिया की, जहां डिसीजन लेता है इंसान, उस मरकज को कहते हैं। तो अल्लाह कह रहे वहां इनके प्रॉब्लम है, वहां खराबी है, वहां बीमारी है, और वो बीमारी मुनाफकत की, धोखा देने की, चक्कर देने की।

अब ये बीमारी है तो इसका इलाज होना चाहिए, इलाज करो, मत करो ये काम, इससे परहेज करो। लेकिन जो इलाज नहीं करेगा तो कानून खुदा क्या है, ये बढ़ जाएगा, वो और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझेगा, मैं तो बड़ा तेज हूं, मैंने तो दो दफा रसूल पाक को धोखा दे दिया, मैंने तीन दफा धोखा दे दिया, मैंने चार दफा धोखा दे दिया, और कॉन्फिडेंट होता जाएगा इस बात से गाफिल के और जहन्नम के नजदीक होता जा रहा है। आगा मोहसिन कराती, जरा थोड़ी सी आपकी तबीयत फ्रेश करने के लिए, आगा मोहसिन कराती एक अपनी किताब में एक वाकया नकल करते हैं कि ईरान के एक शहर के इमाम जुमा थे, बहुत ही नेक, बहुत ही बड़े आलिम थे, आयतुल्ला थे, बूढ़े हो गए बहुत ज्यादा। अब जब बूढ़े हो गए तो कुछ लोग वो कहते थे कि ये बूढ़े हो गए हैं तो इनको बातें याद नहीं रहती तो चक्कर दे लो। तो एक बंदे ने अपने एक दोस्त से कहा कि ना आगा साहब जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, इनको पता नहीं चलता, भूल जाता इनको। तो मैं पिछले महीने गया और मैंने कहा कि मेरी अहलिया को विलादत होने वाली है तो मेरी हेल्प करें, तो उन्होंने मुझे उठा के पैसे दे दिए। कुछ अरसा बाद मैं दोबारा गया तो दो तीन महीने गुजरने के बाद मसलन मैं दोबारा गया, मैंने फिर कहा कि मेरी अहलिया के यहाँ विलादत होने वाली है, मेरी हेल्प करें, उन्होंने फिर दे दिए। तो आज मैं तेरे सामने, मतलब मौलाना के पास तुझे लेके चलता हूँ। तो अपने दोस्त को लेके गया, लाइन में खड़े हो गए जो जो आगा साहब से बात कर रहे थे। तो आगा साहब वाकई कमज़ोर थे, यानी तकिया लगा के लेटे होते थे। तो उस बंदे ने गया, सलाम किया, उन्होंने पूछा क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? उसने कहा जी आगा साहब बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक प्रॉब्लम है, आपसे हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा क्या हेल्प चाहिए? तो उसने कहा कि जी मुझे मेरी अहलिया के यहाँ विलादत होने वाली है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो आगा साहब ने हस्ब मामूल अपना जो बॉक्स था या जो भी था उधर डाला, कुछ रकम निकाली और उसके हाथ में पकड़ाई और साथ उसे कहते हैं कि एक बात भी मैं सुन लो मेरी, करीब होकर। वो करीब हुआ तो आगा ने उसे कहा कि अपनी बीवी की कदर करो जो एक साल में तीन दफ़ा औलाद पैदा करती है, अपनी इस बीवी की कदर करो, वरना तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी बीवी माशाल्लाह साल में तीन। तो बाज़ दफ़ा जो देखने वाला है वो किसी मसलियत की वजह से दे देता है लेकिन अगला समझता है मैं बड़ा चलाक हूँ, इसको पता ही नहीं चलता। रसूलुल्लाह भी ऐसे ही थे और मोमिन भी ऐसा ही होता है। हदीस में इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की तेजी से बचो, मोमिन की होशियारी, उसको पता होता है लेकिन वो तजाहुल करता है, गोया के उसको अल्लाह ने ये कहा हुआ। कुरान में रसूल पाक से कहा गया ला तजालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, मुसलसल हर रोज हर वक्त आपको इनकी खयानतों की इतला मिलती है, फाफु अनहुम वस्फा, इनको माफ कर दे और सर्फ नजर करे, गोया आपने देखा ही नहीं। तो मोमिनीन भी ज़ाहिर सीरत रसूल हुज्जत है, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मुनाफिक क्या समझता है, मैं बड़ा तेज हूं। तो फिर कई मकामात पर अल्लाह तबारक व ताला इनको जलील भी करवा देता था जब इनके प्लान्स खुदा बंदे आलम वही के जरिए रसूलुल्लाह को बता दिया करते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इंशाल्लाह वाज़े फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में मरज है। ये बात अब रूहानी मरज की हो रही है। फजादहुमुल्लाहु मरदन, तो अल्लाह ने इनका मरज और बढ़ा दिया उसी कानून के तहत जो एक्ट कर रहा है। इन कवानीन को अल्लाह ने कुरान में अपनी सुन्नतें कहा है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, ऐ रसूल कभी भी तू अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, न तब्दील पाएगा न तहवील पाएगा। तब्दील और तहवील में क्या फर्क है? तब्दील

एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को उसकी जगह रख देना, यह तब्दीली है। तहवील किसे कहते हैं? चीज वही है लेकिन उसके अंदर कुछ रद्द बदल कर देना। अल्लाह की सुन्नत में ए रसूल कभी भी ना आप तब्दील पाएंगे ना तहवील पाएंगे, ये अटल है, ये नहीं टल सकते। ये कानून मुशख्खस हैं अजल से। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, ए मुसलमानों तुमसे पहले भी अल्लाह की गुज़श्ता अकवाम में यही सुन्नतें गुजरी हैं। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, तो जमीन में चल फिर के देख लो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, यानी तुमने अगर किया तुम्हारे साथ भी वैसे ही होना। अगर यहूदी हजरत मूसा की असल तालीमात को तर्क कर दें, वैसे बेशक मूसा के नारे मारते रहे, अगर यहूदी तौरात की हकीकी तालीमात को तर्क कर दें, वैसे तौरात को चूमते चाटते रहे, अल्लाह ताला उन पर जिल्लत और रुसवाई दे मारता। और आज मुसलमानों की भी यही हालत है, मुसलमानों की भी यही हालत। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। तुमने छोड़ा इस कुरान को, माजूर किया इस कुरान को, इसका नतीजा कुरान मजीद आप पढ़े, पूरी तहरीक है, एक ऐसी तहरीक जिसको अल्लाह खुद कमांड कर रहा है, ये करो ये नहीं करो, अभी सब्र करना है, अब जिहाद करना, अब जो मैदान से भागा सीधा जहन्नम में फेंकूं, अल्लाह खुद कमांड कर रहा है इसको। ये कुरान वाला प्रैक्टिकल दीन कहां, और एक कोने में बैठकर मुसल्ले फाड़ने वाला दीन कहां। ये मुसल्ले फाड़ने से मेरी क्या मुराद है? मुसल्ले ही फाड़ता है, बद्दुआएं करता है, विर्द ही करता है, मैदान अमल में नहीं है, मैदान अमल में दिखाई नहीं देता। जबकि अल्लाह ने इज्जत और इफ्तिखार का वादा अमल पर किया है, घर बैठ के प्लानिंग और बद्दुआओं और वजीफों से नहीं किया अल्लाह ने वादा। वरना रसूल पाक के, मैं बार बार कहा करता हूं कि रसूल पाक की दुआ से ज्यादा किसी की दुआ में ताकत नहीं है, और रसूल पाक अगर कोई वजीफा करे तो उनसे ज्यादा किसी के वजीफे में ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ने कहा मैदान में जाना, मैदान में जाना है, जंग करनी है, भूख बर्दाश्त करनी है, प्यास बर्दाश्त करनी है, जख्म बर्दाश्त करने हैं, अपने साथी कत्ल करवाने पड़ेंगे, तब वो वादा पूरा होगा। इमाम हुसैन भी मैदान में जाते हैं, मौला अली भी मैदान में जाते हैं, शेर खुदा कहलाते हैं इसलिए कि मैदान में जाते हैं। अब मैं घर बैठ के शेर खुदा की तस्वीर पढ़ता रहूं, अली शेर खुदा, अली शेर खुदा, और बाहर कोई मसला हो जाए मेरी हालत चूहे जैसी हो, तो ये विर्द वजीफा मुझे फायदा, तो अली भी कहेंगे ए ईमान वालों को क्यों कहते हो जो करते नहीं जो कुरान कहता है, वही मौला अली भी कहेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके दिलों में मरज है तो अल्लाह ने इनके मरज को और ज्यादा कर दिया। वलहुम अदाबुन अलीमुन, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्द देने वाला अजाब है। बिमा कानू यकदिबून, उस झूठ के सबब जो ये बोला करते थे, झूठ बोलते थे, झूठ बोल के अपने आप को बड़ा समझदार समझते थे। आयत नंबर 11, व इदा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो बस इसलाह करने वाले, हम और फसादी, हम पर इल्जाम लगा रहे हो, ये इनकी हालत होती है। जमीन में फसाद से क्या मुराद है? जब जमीन मुआशरा माहौल उस तरह हो जाए जिस तरह खुदा चाहता है, ये इस्लाह है, और जब भी कुछ ऐसा हो जो खुदा नहीं चाहता ये फसाद है। फसाद ये नहीं है कि दो बंदों को जाके लड़वा दो सिर्फ तब फसाद होता, जब भी कोई खुदा की नाफरमानी करता है वो फसाद करता है। और इस्लाह क्या है? फसाद को दूर करना। अंबिया किस लिए आए थे? इस्लाह के लिए। इमाम हुसैन करबला में जाते हुए क्या फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम?

क्या फरमाते हैं, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। अंबिया क्या फरमाते हैं, इन अरदतु इल्लल इस्लाह मस्ततात वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मेरा और कुछ भी इरादा नहीं है। कौम ने जब झूठे इल्जाम लगाए, ब्लेम्स लगाए, तो क्या कहा हजरत शुएब ने, मेरा कुछ इरादा नहीं है सिवाय इस्लाह के, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं वो उतनी इस्लाह करूंगा। जाहिर ताकत से बढ़कर तो अल्लाह जिम्मेदारी डालता भी नहीं। जितनी मेरे अंदर इस्तेआत है, मेरा इरादा है कि मैं सिर्फ इस्लाह करूं, और मेरी तौफीक कुछ भी नहीं है सिवाय वो जो अल्लाह देता है मुझे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के जरिए, अल्लाह जो मुझे तौफीक देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस फसाद यानी अल्लाह की नाफरमानी, इनफरादी तौर पर हो या इज्तमाई तौर पर हो मुआशरे में। मुनाफिक क्या करते थे, बहुत सारे काम करते थे। कभी आम सादा मोमिनों को, नए ईमान लाने वालों को, उनको शकूक व शुबात डालते रहते थे। कभी जब रसूलुल्लाह इन्फाक की दावत देते, जंग का मौका आ जाता या गुरबा मसाकीन की मदद का मौका होता, रसूलुल्लाह कहते कि लाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, कुरान भरा पड़ा इससे, तो ये क्या करते थे। और इस पर अल्लाह को, अल्लाह ने जो बात शिद्दत से की हुई है कुरान में, ऐसी बात नहीं मिलती। सूरह तौबा में है कि ये आपको क्या बता रहा हूं, ये किसको कुरान कह रहा है कि इनसे कहा जाता है फसाद मत करो, जब इनसे कहा जाता है फसाद ना करो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। ये क्या क्या हरकतें करते थे। एक हरकत क्या थी, मसलन गज़वा तबूक के लिए जब जाना था तो रसूलुल्लाह ने लोगों से कहा कि हेल्प करो, जिसके पास जो कुछ है हेल्प कर सकता है जितनी करे मेरी। तो अब हेल्प करने वालों में से कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दे दिया, उनको देख के क्या कहते थे, ये यहां से फारिग है, रोटी कहां से खाएगा, कुछ सोच लिया करो, ठीक है हम भी तो मुसलमान हैं, हम पागल हैं। तो जो जज्बा ईमानी की वजह से, चूंकि मौका बड़ा क्रिटिकल था, जिंदगी मौत वाला मामला था गज़वा तबूक में, तो बाज जगह ऐसी होती जहां इंसान जान भी दे दे तो बनता है, नॉर्मल हालात नहीं होते। तो जो ज्यादा दे रहे थे उनका मजाक उड़ाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो आते थे रसूलुल्लाह के पास और कहते थे या रसूलुल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे कोई जिस्मानी मशक्कत करवा लें, हम अपनी मेहनत पेश कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, कोई मशक्कत वाला काम कर सकते हैं, हमसे कोई खिदमत ले लें, हमारे पैसे हैं ही नहीं। और कुछ लोग वो थे कि जिनके पास बहुत कम था, इतना कम कि अगर कोई दे तो हंसी आ जाए, मुनाफिक को अलबत्ता, मोमिन को नहीं। तो जब वो अपनी हैसियत के मुताबिक बिल्कुल हकीर सी कोई चीज ला के रसूलुल्लाह को देते थे तो ये उनका मजाक उड़ाते थे। अपने लफ्जों में बता रहा हूं, अपने तसव्वुर से, कि वो जब दे के वापस आ रहा है तो ये तंज कर कहते थे ये भी इस्लाम पर एहसान करके आ गया, मसलन 2 रुपए देकर और ये समझ रहा है मैंने बड़ा कमाल कर दी। ये इन्फाक करने वाले मुख्तलिफ तबकात का मजाक उड़ाते थे। आप देखेंगे अल्लाह ने कुरान में इनको क्या कहा है। खुदा ने फरमाया, ए रसूल आप इनके लिए अगर मुझसे माफी मांगे इनको मैं माफ करूं, इनके लिए अगर आप तलब मगफिरत करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमतुल लिल आलमीन, अगर इनके लिए मगफिरत तलब करे, क्या फरमाया, सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, आप इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें बराबर है। अगली बात इससे भी सख्त फरमाई, फरमाया इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन लन यगफिर अल्लाह,

रसूल, अगर आप 70 बार भी इनके लिए मगफिरत तलब करें, मैं हरगिज इनको नहीं छोड़ूंगा। और ये 70 कसरत के लिए, और जाहिर हदीस भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे पता होता 71 बार कहने से माफ हो जाएंगे तो मैं 71 बार कर देता, लेकिन ये 70 कसरत मुराद है। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना 100 बिस्मिल्ला, ये 100 बिस्मिल्ला काउंटेड नहीं होती, यानी बिस्मिल्ला ही बिस्मिल्ला आओ। तो ये 70 का अदद जो है कसरत के लिए अरब इस्तेमाल करते, इन तस्तगफिर लहुम सबईन मरतन लन यगफिर अल्लाह लहुम, अल्लाह इन्हें फिर भी हरगिज लन यगफिर अल्लाह लहुम कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा के रास्ते में माल खर्च करना ये हर किसी का काम नहीं होता, ठीक है ना, बंदे इसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे होते हैं, कोई तस्बीह बता दो सवाब इधर से ले ले, ये पैसे नहीं देने पड़े। बड़े बड़े सियाने मोमिन हमने मुआशरे में देखे, बहुत तकरीर करेंगे, बहुत फलान करेंगे, जेब की तरफ हाथ नहीं जाता हूं कभी, उसके ऑल्टरनेट बहुत सारे वजीफे और बहुत सारी चीजों तलाश की होती। तो अल्लाह को ये कौम इन्फाक करने वाले इतने प्यारे हैं कि इनका मजाक उड़ाने वाले को धमकी क्या दे रहा है कि मेरा रसूल भी 70 बार माफी मांगे मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, इतना बड़ा जुर्म है। और ये फिर इन्फाक की अहमियत पर इंसान, तो एक ये फसाद का तरीका था, और एक फसाद क्या होता था, ऐन जंग के मौके पर बहाना बना कहते थे हम तो रुस जाते थे, यानी रुसने की एक्टिंग करते थे, हमारी तो बात ही नहीं मानी, हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। ऐन में गजवा ओहद में 1000 बंदा निकला, 300 बंदा मदीने से निकल कर जब दुश्मन का लश्कर सामने है, उन्होंने कहा हम रुस गए, हम माइंड कर गए, हमारी बात नहीं मानी दूसरे पास, तो माइंड कर गए तो तुम आओ ही मत, आधा आकर और दुश्मन के सामने तना छोड़ के जा रहे हो, ये इनकी खयानतें थी। अब जब ऐसी हरकतों पर थे मक्कार, और जो कुरान ने सूरह मुनाफिकीन में इनकी सिफात, सूरह मुनाफिकून में बताई है इनकी सिफात, वो क्या है कि जब आप इनको देखते हैं, युअजिब का कौल हूं, आपको जब आप इनकी बातें सुनते हैं आप इनकी बातों में जज्ब होते हैं, कहते मतलब इंप्रेस हो जाते हैं, क्या जबरदस्त तरीका है बात करने का। व इदा रअयतहुम, वो मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहा था, व इदा रअयतहुम तुअजिबु का अजसाम हो, पर्सनैलिटीज कुरान डिस्क्राइब कर रहा है मुनाफिकीन की, ऐसा नहीं था कि फटे पुराने कपड़े अनइम्प्रेसिव पर्सनैलिटी वाले होते थे, ऐसे होते थे कि मसलन अभी हॉल में कोई बंदा हमें पहचान भी हो और वो मसलन 10 लाख का सूट पहन के और 3 लाख का जूता पहन के और 5 लाख का मोबाइल पकड़ के दाखिल हो बंदे, और एक्शन में ऐसे चल रहा हो, प्रैक्टिस करवाई गई हो उसको कि लोग कहें भी क्या पर्सनैलिटी, तो अब भाई बाकी तो जो बैठे थे बंदे ही नहीं थे, दुनियादार ऐसे होते। तो ये मुनाफिक भी ऐसे थे, मालदार लोग थे, और मालदारों में कुछ भी ना हो तब भी बोलते हैं, लोग सुनते हैं उनके माल की वजह से। वइदा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब ए रसूल आप इन्हें देखते हैं, आप इनकी जिसामत को देखकर, इनकी फिजिक को देखकर आप इंप्रेस हो जाते हैं, कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी। वह इन यकूलू, और अगर ये बोले तस्मा अल कौल हिम, आप सुनने लगते हैं, इतना अच्छा बोलने का अंदाज है। वह इन यकूलू तस्मा अल कौल हिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ऐसे टेक लगा के बैठते हैं जैसे लकड़ियां पड़ी, खुश्क लकड़ियां पड़ी होती, ये गोया के हिट किया उन पर कि जैसे लकड़ियों में कोई हिस नहीं होती, जान नहीं होती, लेकिन ये उसी तरह अकड़े हुए आके टेक लगाकर बैठ जाते हैं आपकी महफिल में। हुमुल अदुव फहदर हूं, ये लोग आपके दुश्मन हैं, इनसे बच कर रही है। ये मुनाफिकों की सिफात बयान की। अब जब इनसे कोई कहता था, अब बोलने में तो चैंपियन थे ये, जबान के धनी होते थे, तो जब कोई इनसे कहता था कि यार ये तुमने क्यों किया, ऐसे आगे से तकरीर करते थे कि बंदा चुप कर जाता, नहीं नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, आप तो बिल्कुल

ठीक, बड़ी बड़ी कस्में खाते थे अल्लाह की। कुरान ने फरमाया इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, अपनी कस्मों को ढाल बनाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते रोक रहे होते हैं, कोई कहे क्यों कर रहे हो, अल्लाह की कसम हम तो मुखलिस हैं, हम तो ये असल में हमारी नीयत ये थी, तुम हमारी नीयत में शक करते हो, ये मुनाफिक होता है। जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद न करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये इतना सादा सादा नहीं कह देते थे, ये दलीलों के साथ कहते थे जो कुरान ने बाकी जगह भी डिस्क्राइब किया है। इन यकूल तस्मा अल कौली, या सूरह बकरा में दूसरे से बारे में आयत है वमिन अन्नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और लोगों में से ऐसे भी हैं कि उनका इस दुनियावी जिंदगी में उनकी बात का अंदाज आपको बहुत इंप्रेस करता है। आप कहते हैं इससे ज्यादा मुखलिस तो बंदा ही नहीं मिलेगा, इतनी ज्यादा खुलूस का इजहार कर रहा और करता क्या है, वह युशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बे, और कहता है कि मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूं, दिल से बात कर रहा हूं, काश मैं अपना दिल चीर के आपके सामने रख सकता, आपको पता चलता आपकी मोहब्बत से मेरा दिल सरशार है। और अल्लाह क्या कहता है, वह हुआ अलद्दुल खिसाम, ए रसूल ये शख्स आपके बदतरीन दुश्मनों में से, लेकिन अपने आप को पेश ऐसे करता है कि आप भी इंप्रेस हो जाते हैं। वमिन अन्नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयात दुनिया व युशहिदुल्लाह, अल्लाह को गवाह बनाता है अला मा फी कल्बे, जो उसके कल्ब में, उस पर कहता है अल्लाह गवाह है मेरे दिल में यही बात है, मैं जबान से नहीं कर रहा। वह हुआ अलद्दुल खिसाम, और तेरे दुश्मनों में से बदतरीन झगड़ालू तरीन यही दुश्मन है तेरा। अब आप सोचें अल्लाह जो इनको डिस्क्राइब कर रहा है बता रहा है ये कितने खतरनाक लोग थे। ये नहीं कि बजाहिर मुनाफिकों वाली हरकतें करते थे, बजाहिर उनको देख के बंदा इंप्रेस हो जाता था, इतनी पर्सनैलिटी, इतना बातें ऐसी करते थे कि दूसरों को इतनी बातें करनी नहीं आती थी। अब अंदाजा लगाएं ये कैसे कहते होंगे, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले, तुम्हें हिया नहीं आती हम पे इल्जाम लगाते, हम मुसलमान नहीं, तुम्हारे सुरखाब के पर लगे हुए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बातें करने के ये बहुत ज्यादा तेज थे। और आज के लिए आखिरी आयत नंबर 12, अला खबरदार इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह बता रहा अला, ये अला का जो हर्फ होता है ये खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि बेशक यही लोग यही हैं फसादी, यही फसाद करने वाले, ताकीद के साथ कहा जा रहा है। वलाकिन ला यशुरून, इनको शऊर नहीं है इस बात का कि ये अपने साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, इस किस्म की धोखेबाजियां रसूलुल्लाह के साथ और मोमिनीन के साथ कर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। सवाल अगर कोई करना चाहे तो आज का दर्स तमाम है। एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसकी? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस दर्स से मरबूत सवाल किए जाएं, जब हम उठ जाएंगे फिर कोई और सवाल करना हो तो कर लें, अभी इस दर्स से मरबूत इंशाल्लाह ताला सवाल किए जाएं। जहां पर खुतबा पढ़ा जी, मैं वो मस्जिद में वहां पर गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जा चुका हूं एक दफा। बिस्मिल्लाह, आज तो लगता है ज्यादा ही समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आप बाद में आ जाइएगा फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, और कोई सवाल नहीं है तो आज के दर्स को तमाम करते हैं इंशाल्लाह। अगली इतवार को खुदा ने तौफीक दी और ज़िंदगी दी, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।